शबाश शबाश आप प्रकारम भुगे विजयंचेस्तुन्न श्रीरामचंद्रमूर्तिनी अंतःपुर गवाक्षण नुंडी सीता देवी वोरकंट सूचनदै चेंगटनुन्न चलिकत्तेतो एंत सोग

वरुणी वाला ते मीठो वधू तला ते मीठो तेलुगु बोले का पेल्लीलु दरि पिंचिना तेलिसि कटनाल कई बतुकु बलिते

भने प्रसम प्रभव ज्वाललो प्रसव शेरुनि दहिंचगा पतिने कोलु पडी रती देवी दुखितमतिए रोदिंचगा हिमगिरीन्द्र शिखराग्र तांडवत् प्रमदगणमु कनिपिंचगा प्रमदनाथकर पंकज भांकृत डमरुध्वनि विनिपिंचगा काल संकलित भयंकर जलधर अर्भटुल चलित दिक्तटुल चकित दिक्करुल विकृत घिंकृतुल सहस्रफण संचलित पूत